0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा

होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 7 बजे आपके लिए लेकर FM
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ। सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
0: जी हाँ, सुहानी सुबह लेकर 100.1 FM गोल्ड है स्टेशन का नाम, और आ गई हूँ बिल्कुल आपकी सुबह खूबसूरत बनाने के लिए। मैं फिलहाल के लिए, चलिए सुहानी सुबह की जब बात हो रही है तो फिर आज है सोमवार का दिन भाई, काम का दिन। जी हाँ, आज से 2 दिन की छुट्टी के बाद, एक लंबा चौड़ा एक वीकेंड के बाद, और जामाई षष्ठी और योगा दिवस, फादर्स डे, ये सब मनाने के बाद कहीं ना कहीं भाई आलस तो आ ही जाता है। सुबह सुबह उठ के वापस वही भाग दौड़, वापस वही ऑफिस की किचकिच, और रास्ते में ट्रैफिक की किचकिच, तो ये सब हल्का करने के लिए ठीक है मैं आ गई हूँ वापस। और सोमवार का दिन है भाई, शिव का नाम लेकर शुरुआत करते हैं कार्यक्रम

तो लेके भगवान का नाम, चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की आज की कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री दोस्तों, यहां प्रधानमंत्री ने कल कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में भारतीय नौसेना की 3 स्वदेशी युद्धपोतों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक दुनिया में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसकी समुद्री क्षमता पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस वास्तविकता को समझते हुए अपने समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना में 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल की गई हैं, जबकि 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। साल 2014 में देश का रक्षा उत्पादन लगभग 40,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर करीब 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि तीनों पोतों के निर्माण में 200 से अधिक MSME ने योगदान दिया, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री ने IFIH हॉकी महिला नेशंस पर कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत देश के युवा खिलाड़ियों को हॉकी अपनाने के लिए प्रेरित भी करेगी। उन्होंने टीम के भविष्य की प्रतियोगिता के लिए भी शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम आगे भी देश का नाम रोशन करती रहेगी। बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की ओर, जहां एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला चार इंटू हंड्रेड मीटर रिले में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। चीन के शाओशिंग में आयोजित प्रतियोगिता में श्राबनी नंदा, SS नेहा, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना की भारतीय टीम ने 43.85 सेकंड्स का समय निकालते हुए सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, स्वर्ण पदक जीता। जी वही मिश्रित 4x400 मीटर रिले में भारत ने रजत पदक हासिल किए। तीर्थेश शेट्टी, पुवम्मा एमआर, भारत श्रीधर और नीरू पाठक की टीम ने 3:17.6 सेकंड का समय दर्ज किया। इससे पहले मिश्रित 4x200 मीटर रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता था। टीम में प्रणव गौरव, तमन्ना अनिमेश कंजूर और NS स्नेहा भी शामिल थे। एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के इस प्रदर्शन ने देश का गौरव तो बढ़ाया ही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म खामोशी से।

0: तो चलिए दोस्तों, जैसे कि कहा कि अब चलिए खबरों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। क्रिकेट में चलते हैं सीधे। भारत ए ने त्रिकोणीय ए सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका ए को 67 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। नमूला में खेले गए मुकाबले में भारतीय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 397 रन बनाए। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 29 गेंदों में 94 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने केवल 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर नया रिकॉर्ड भी बनाया। तिलक वर्मा ने 67 रन का योगदान दिया। जब जवाब में श्रीलंका ए की टीम ने 47.1 ओवर में 311 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ए की ओर से यश ठाकुर और विप्रज निगम ने 3-3 विकेट लिए, जबकि अंकुल राय ने 2 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही भारत ए ने त्रिकोणीय श्रृंखला का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 25 और 26 अगस्त को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में मेजबानी करेगा। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा का तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों की ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। बैठक का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और नवाचार के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाना है। ये बैठक वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और समावेशी वैश्विक ऊर्जा भविष्य के निर्माण में भारत की भूमिका को सशक्त बनाने का भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान जरूर करेगी। फिलहाल सुहानी सुबह में खबरों का सिलसिला आज बस यही तक। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले गाने की ओर, पर उससे पहले सुन लेंगे एक विशेष सूचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: चल शुरू हो जा।

0: अरे बस बस बस बस, कहाँ पे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

चलिए अब जान लेते हैं मौसम का हाल चाल, मौसम का जायजा लेते हैं। फिलहाल अलीपुर मौसम विभाग से मिली खबर के अनुसार आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम बारिश होने की गुंजाइश भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की गुंजाइश है। वहीं बीते 24 घंटों में जो मौसम का हाल चाल रहा वो कुछ यूँ रहा कि अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम था। अधिकतम नमी 98% और न्यूनतम नमी 69% रही। और बारिश की बात अगर करें तो बारिश कल करीबन 62.1 मिलीमीटर के करीब हुई थी। तो ये था मौसम का हाल चाल, और मौसम का हाल चाल जाने के बाद वापस बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं हमारा अगला गाना आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज़ में।

सीढ़ी की घड़ी समय बता रही है 7:24 और अभी अभी बस कुछ सेकंड में 25 होने वाले हैं, यानी कि 7:30 के करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और अब सुहानी सुबह में बात करेंगे हम इतिहास की, क्योंकि दिन बदलते हैं साल, पर हर एक साल अपनी छाप छोड़ जाता है इतिहास के पन्नों पर। तो चलिए, क्यों है भाई 22 जून का दिन इतिहास में इतना खास, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज के दिन इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज हुई जिसे विज्ञान और सोच की दिशा बदल दी। करीब 1633 को महान खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली की कैथोलिक चर्च की अदालत ने के सामने अपने उस विचार को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उस समय लोगों की मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन गैलीलियो ने अपनी अवलोकन और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर निकोलस कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ये विचार उस दौर में धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध माना गया। परिणाम स्वरूप गैलीलियो ने अपने विचारों के से सार्वजनिक रूप से पीछे हटना पड़ा और जीवन में अंतिम वर्ष पर नजरबंदी में बिताने पड़े। लेकिन समय ने साबित किया कि विज्ञान और सत्य को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। आज गैलीलियो ने आधुनिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नए विचारों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन ज्ञान की रोशनी अंततः अपने मार्ग जरूर बना लेती है। तो इस सुहानी सुबह में याद रखिए, सवाल पूछने और सच की तलाश करने का साहस की प्रगति की ही पहली सीढ़ी होती है। इतिहास के बन्नों से अगली घटना जो हमारे सामने आती है वो है आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा था। 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उस समय नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थे, लेकिन कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर उनके विचार कांग्रेस नेतृत्व से काफी अलग थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई को और अधिक तेज या निर्णायक बनाया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक प्रगतिशील और राष्ट्रवादी धारा के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों और राष्ट्रवादी शक्तियों को एक मंच पर लाना था ताकि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को नई ऊर्जा मिल सके। नेताजी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो नई राह बनाने का साहस भी होना चाहिए। उनके नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की प्रेरणा आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए मार्गदर्शक है। इस सुहानी सुबह में नेताजी को नमन करते हुए याद रखें, सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस भी हो। चलिए इतिहास के पन्नों को वापस पलटेंगे, पर इस गाने के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

इस छोटी सी ब्रेक के बाद एक बार फिर हम वापस आ गए हैं लेकर कार्यक्रम सुहानी सुबह, और मैं हूँ पापिया आपके लिए यहाँ 100.1 FM गोल्ड पर। और सुहानी सुबह में अब बातें हो रही थी इतिहास के बारे में।

जी हाँ, आज के दिन घटी कुछ घटनाओं के बारे में हम बातें कर रहे थे। अब सीधे चलते हैं 1941 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ा मोड़ आया, जब नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबारोसा के तहत सोवियत यूनियन पर विशाल सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया था। इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में गिने जाने वाले इस हमलों में लाखों सैनिक शामिल थे, जिसने युद्ध की दिशा बदल दी और पूर्वी मोर्चे पर भीषण संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया ने महसूस किए। इतिहास हमें याद दिलाता है कि युद्ध केवल सीमाओं को नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ आज ही के दिन 1944 में GI बिल ऑफ राइट्स यानी सर्विसमेंस रीएडजस्टमेंट एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। ये कानून द्वितीय विश्व युद्ध से लौटे सैनिकों की सहायता के लिए बनाया गया था। इसके तहत पूर्व सैनिकों को शिक्षा, घर खरीदने के लिए ऋण और रोजगार संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई, जिससे लाखों सैनिकों की को नया जीवन शुरू करने का अवसर मिला। ये कानून इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है कि देश की सेवा करने वालों के पुनर्वास और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कदम कितना आवश्यक होता है। बढ़ेंगे आगे कुछ और घटनाओं के बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले सुनेंगे हमारा अगला गीत।

दोस्तों इतिहास के पन्नों से एक और डेट निकल आई है। जी हाँ, 22 जून 1986 को जब डिएगो मैराडोना ने 1986 में फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऐसा गोल किया जो आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में गिना जाता है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में मैराडोना ने गेंद को हाथ से गोल में पहुंचा दिया। रेफरी ने इस गोल को मान लिया और बाद में मैराडोना ने इसे मजाकिया अंदाज में हैंड ऑफ गॉड नाम दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसी मैच में उन्होंने एक शानदार व्यक्तिगत गोल भी किया जिसे अक्सर फुटबॉल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गोलों में गिना जाता है। यह मैच आज भी खेल जगत की सबसे यादगार कहानियों में शामिल है। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण भी देखा गया था। यह अद्भुत खगोलीय घटना भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के कई क्षेत्रों में दिखाई दी। कुछ स्थानों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग 6 मिनट 39 सेकंड तक रहा जिससे दिन के समय कुछ क्षणों के लिए अंधेरा छा गया। लाखों लोगों ने इस दुर्लभ नजारे को विशेष चश्मों और वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से देखा। यह घटना हमें ब्रह्मांड की अद्भुत व्यवस्था और खगोल विज्ञान की रोमांचक दुनिया की झलक दिखा दी है। तो ये था ऐतिहासिक घटनाओं का सिलसिला जो है सुहानी सुबह में, आज बस यहीं तक। अभी आगे बढ़ेंगे, आज के दिन जन्मे कुछ विशेष व्यक्तित्वों के बारे में हम जान लेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे अगला गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुहाने सुबह में आगे बढ़ते हैं और जन्मदिन के बारे में जानते हैं। आज ही के दिन 1900 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साहसी सेनानी गणेश घोष का जन्म हुआ था। गणेश घोष का नाम विशेष रूप से 1930 के प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और देश की आज़ादी के लिए अनेक संघर्षों का हिस्सा बने। उनका जीवन साहस, देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक है। आज के दिन उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद भी करते हैं। साथ ही साथ आज ही के 1985 में भारतीय महिला बास्केटबॉल की जानी मानी खिलाड़ी अनीता पोलदुराई का नाम

जन्म भी हुआ था। अनिता बालदुरई भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने नेतृत्व, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वे भारतीय बास्केटबॉल की प्रेरणादायक हस्तियों में गिनी जाती हैं। उनकी उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा देती है। उनके जन्म दिवस पर भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलते चलते हम करीबन कार्यक्रम के आखिर में पहुंच चुके हैं, और जाते जाने से पहले एक और सेक्शन बचा है। जी हाँ, आज के दिन, और जानेंगे आज क्या मनाया जाता है दुनिया भर में। पर उससे पहले सुन लेंगे आशा भोसले, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की आवाज़ में

कारण ये है कि वर्षावन मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया हमारे वातावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के वर्षावन जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने में हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक ताकत है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की लगभग आधी से अधिक वनस्पति और पशु प्रजातियां वर्षावनों में पाई जाती हैं? यानी अगर वर्षावन सुरक्षित है तो जैव विविधता भी सुरक्षित है। ये ऐसी औषधियां जिनका उपयोग आज चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, उनकी खोज भी वर्षावनों में पाए जाने वाले पौधों से हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल लाखों हेक्टेयर वर्षावन कट रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, खनन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन इनके अस्तित्व के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जब एक वर्षावन नष्ट होता है तो केवल पेड़ ही नहीं कटते बल्कि हजारों जीवों का घर भी उजड़ जाता है। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने स्तर पर कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, कागज का सोच समझकर उपयोग करना, वर्षा पर्यावरण अनुकूल उत्पादन अपनाना और प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े अभियानों का समर्थन करना। याद रखिए, पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों या संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। विश्व रेन फॉरेस्ट दिवस हमें याद दिलाता है कि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, संतुलित जलवायु और समृद्ध जैव विविधता वाली दुनिया देनी है तो वर्षा वनों को बचाना होगा। तो आइए आज हम संकल्प लें कि प्रकृति के इन अनमोल खजानों की रक्षा के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि जब जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी संदेश के साथ फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा। प्रकृति से प्यार कीजिए, पेड़ों का सम्मान कीजिए और धरती को हरा भरा बनाए रखने में अपना योगदान भी दीजिए। और इसी के साथ सुहानी सुबह का आज का अंक भी यही समाप्त होता है। जाते जाते एक और बहुत ही प्यारा सा गाना मैं सुनाना चाहूंगी किशोर कुमार की आवाज में। जी हाँ, आने वाला पल फिल्म गोलमाल से है ये गाना और इस गाने के साथ ही मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी कुछ ही देर में वापस 10:02 पर FM रेनबो पर लेकर। नॉनस्टॉप गपशप, ढेर सारी बातें होंगी, साथ ही साथ चटपटे नुस्खे भी होंगे और उसके बाद फिर 11:25 से आज लोआगे उनकी याद है। जी हाँ, उसके पहले आप विशेष कार्यक्रम आप सुनने को मिलेगा आपको FM गोल पर। फिलहाल के लिए आने वाला पल जाने वाला है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू

0: को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित

0: करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says strong maritime capability is deciding factor for a country's economic and strategic influence and India is preparing for it. President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. U.S. Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
2: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base, and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
4: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno.

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: बुधरी ताती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई, सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है?
3: हम जैसे जंगल में गांव में रहने वालों को चयनित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें खुश है, हमारे जो समाज के लोग भी संकुचित रहते थे, बिना उनको कोई पूछताछ नहीं, ऐसी व्यक्ति को पद्मश्रीता जो मिल रहा है उसके लिए मैं सभी के लिए बहुत खुश हूँ।
2: आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
3: गांव ईरानार में ही मेरा जन्म है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे, हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर के हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहां पर पैदल पैदल जाते थे, वहां काम करते थे सेवा भाव पे। वैसे ही कई दिनों से बीता है। फिर माँ भी हमको एकदम, हम लोग दो भाई दो बहन, ऐसे 4 भाई बहन थे, बड़े भाई तो नहीं है अभी, हम लोग भी 2 बहन 1 भाई है। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। फिर 15 साल का आयु था, मेरे मन में ऐसी पता नहीं कैसा आया, और हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि ये सब बचपना में जैसा गुजरे और आज यहाँ तक की पहुँच गए।
2: आप पिछले करीब 40 वर्षों से आदिवासी इलाकों में और वन क्षेत्रों में नशा मुक्ति तथा सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही हैं। ये सब आपने कब, कैसे और क्यों शुरू किया?
3: ये 1984 में मैंने नागपुर चले गई और महिलाओं के बीच में काम देखी, व्यवहारिकता 2-3 महीना देखने के बाद मैं वापस आई। और हमें भी मन में आया कि मेरे दक्षिण बस्तर हो, बस्तर हो, जहाँ भी हो, हजारों बहने अनविज्ञता, कभी शिक्षा नहीं पाए, स्कूल को पता नहीं है, ऐसी बहनों के बीच में जाके काम करना चाहिए। उसी समय से मेरा 84 से मन में आया है और मैं इस क्षेत्र में 1986 में ही काम शुरू की, और विशेष करके अबुनमाड़ को पहले चुई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ। और वहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में काम करना है तो एक आदमी से नहीं होगा, यहाँ के लोकल लोगों को साथ लेना पड़ेगा, इनके साथ में काम होगा। 1986 से ही निरंतर साल भर का पूरे 500 गांवों को संपर्क में ली हूँ, एक लक्ष्य रखी हूँ, सबसे पहले मैं 500 गांवों को संपर्क करूंगी और इसी समाज से जो बहने मिलेंगे तो उनके साथ में मुझे काम करना होगा, उनको प्रशिक्षित देना है और कार्य काम कैसा करना है, मैं उन्हीं से स्टार्ट की हूँ। 15-20 साल से 30-35 साल की बहनों को हमने यहाँ पर वापस उनको लाते

0: लाने के बाद उनको साक्षरता सिखाए, उनको एकदम बच्चे जैसा पकड़ पकड़ के उनकी बड़ी बहनों को सिखाना, मन तो तकलीफ तो है, जैसा गिल्ली मिट्टी को आकर देना सरल होता है, पर वैसे बड़े लोगों को कठिन परिस्थिति में भी सीखे है। तो मैं उनको साक्षरता सिखाने के बाद ही ये सब कार्य शुरू किए है, और उनके कारण से सब बहुत अच्छा सफल भी मिला है और कार्य करने में गति हो गया, कि क्योंकि एक साल हमने पूरे गांव को देखे हैं, परिस्थिति देखे हैं कि इनको कैसा किस टाइप के काम करना है, क्योंकि हम लोग को देखने से, हमारे ही समाज के लोग हैं जंगल इलाका में रहने वाले, हम लोग को देखने के बाद ही दोबारा हमारे सामने आना पसंद नहीं करते थे। ये सारे कठिनाई देखने के बाद जो है हम लोगों के मन में ऐसा एक तो काम हुआ कि इनके बीच में हमको बड़े ठोस रूप से काम करना चाहिए। करीबन 150 तक कैसी बहने, पूर्ण टाइम काम करने वाले बहने भी साथ दिए और साथ मिले कि हम काम को पहला ही ऐसा है।
1: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
0: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है, तो हमने पैदल इसलिए घूमे है कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे हमको समझ में नहीं आता है। हम उनके पास जाना है, उनके पास उठना बैठना, उन लोग जैसा रहते हैं उनके साथ रहना, जो खाते हैं उनके साथ खाना, और जैसे कभी ठंड में है तो बिना कपड़ा के सोते रहे। अभी तो विकास हुआ, उस समय उनको पहनने के लिए एक साड़ी होता था, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता था, किसी के पास एक कंबल होना मैंने बहुत बड़ी बात समझते थे। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तकलीफ हुआ है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज आवश्यकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है। उनके साथ काम नहीं करती तो उनके बीच में नहीं जाती, तो शायद काम करने का मुझे भी इतना अनुभव नहीं होता कि हम क्या करेंगे कैसा करेंगे। उनके पास टारेट जाने के कारण, इतना घूमने के कारण, ये सभी उस समय रास्ता नहीं होता था, कभी साइकिल जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता था, जैसे गाय बैल जाता है ऐसी रास्ता से हम लोग पूरे समय में उनके पास पहुंचे गए।
1: आपने अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण देती थीं, या अभी भी किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण देती हैं?
0: इस समय तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए इसलिए मन में आया कि हमारे एक तो ऐसा गरीब स्थिति रहा, तो उस समय सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार भी देना है, संस्कार भी देना है, जागरूकता लाना है। तो ये मन में आया कि हम लोग उनको साक्षरता भी बनाए। साक्षरता लगभग 400-500 बहने उसमें साक्षरता ली है, 5वीं, 8वीं, 10वीं, कभी स्कूल नहीं गया, ऐसी बहनों को हमने साक्षरता बनाए, आत्मनिर्भर किए। दूसरा है कि हम लोग उनके पास जाते थे, कभी 1-2 पैसा होता था, उस समय तो सीट का घर नहीं होता था, घास भूसा का घर होता रहा, वहाँ पैसा छुपा के रखना, फिर जमीन में गाड़ के रखना, कभी दिमाग पकड़ता रहा, कभी चूहा कतरता रहा। तो ऐसी लोगों को हमने आत्मनिर्भर करना, उनको आर्थिक स्थिति सुधारना है तो कैसा करना होगा, उनको हम लोग उनको सिखाए, पास में लाए, समझाए। और बैंक को कभी नहीं जानते थे, अब वहां तक उनको ले जाके 10-12 हजार खाता खोले, उस समय उनके पास पैसा नहीं होता था, 500 रुपये, 50 रुपये में हमने खाता खोले। बैंक मैनेजर से भी बात की है कि इनका आर्थिक स्थिति सुधारना है, इनको निर्भर करना है, उनको स्वयं पर स्वावलंबन बनाना है, तो आप भी इनको मदद करिए, 10 रुपया भी लाएंगे तो उनको खाता में जमा करिए। फिर सिलाई का प्रशिक्षण दिए, साथ साथ में कढ़ाई बुनाई का काम किए, ऐसा आत्मनिर्भर उनको किए है, स्वयं सक्षम खड़े हो गए। और आज जो है 1-2 लाख हर महिलाओं में जरूर होगा।
1: महिलाओं के अलावा आपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काफी अच्छा काम किया है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं।
0: क्योंकि उस समय बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, माँ के साथ मजदूरी करना या फिर मामा इकट्ठा करना, आप जान रहे हैं ऐसा उनका जीवन व्यतीत होता था। हमने सोचे कि इनको इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं का नागरिकता है, ये गाँव के होते हैं, और आने वाले समय में उन्हीं लोगों के भविष्य कैसा बनाना है। हम लोग सोच के एक बाल संस्कार केंद्र के नाम से हमने शुरू किए हैं, कई स्थानों में बाल संस्कार शुरू किए, 4 साल से 5-6 साल तक की हमने उनको साक्षरता, खेल कूद से हंसते हंसते कई प्रकार का करते हुए उनको आगे बढ़ाए हैं। 6 साल

0: होने से हम लोग सीधा स्कूल में उनको भेजने का कोशिश किए हैं। तो ऐसी कई जगह में हमने बाल संस्कार केंद्र के रूप में किए हैं, कई बच्चों का आज ही भविष्य बहुत बना है, हजारों बालक बालिका है शिक्षा पाए हैं और स्कूल जाते हैं, जहाँ नहीं जाते वहां तक भी हमने इस सब किए हैं। अब स्मार्ट चित्र जैसा हम लोग को देख के भागने वाले माता बहने आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आज कोई घर में रखवाली करने के लिए भी कोई नहीं ऐसा बच्चों को भेज रहे हैं। बहुत अच्छा सफल हुआ इसमें भी बच्चों का, आज ही अच्छे अच्छे पद में उन्होंने पहुंचाए और अभी मिलते भी है तो बोलते हैं कि धन्यवाद दीदी, आपने हमको बहुत आगे किए हैं, बड़े बड़े पोस्ट में है, उनका जिंदगी अच्छा बन रहा है। वैसा कई बच्चों के लिए हमने काम किए शिक्षा के रूप में।
1: बुद्री जी, आपको इस इलाके के लोग बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगता है और ये नाम आपका कब और कैसे पड़ा था?
0: ये तो मैं 1986 में जब जाने लगी हूँ तभी से लोग ये हमारे लिए पूरा चिंता करती है। एक हमारे घर में कोई बड़े होते हैं तो हम अच्छा लगता है, जैसे कि परिवार में कोई बड़ा होता है लोग आदर से उसको नाम नहीं लेते, बड़े दीदी के नाम से जाना जाता है। ये नाम 1986 में जब मैं गांव में जाती थी लोगों के साथ बैठना उठना, हम तो बड़े को बड़े आदर करते हैं, माँ है तो माँ बोलते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को प्यार से नाम लेते हैं, वो हम लोग अपने आप उन्होंने चुने हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सबका चिंता करते हमारे बड़े दीदी है। वैसा इस नाम से लोग अधिकतर लोग बोलते हैं और आजकल तो माँ कह के भी पुकारना चालू किए। इस परिवार का हम लोग यहाँ का सब परिवार के एक सदस्य के समान है और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग हमको बड़े दीदी के नाम से छोटे से लेके बड़े तक नाम लेते हैं तो अच्छा लगता है समाज में जाके, क्योंकि हम उस समाज से घुल मिल होके रहते हैं, समरसता एक मिलाते हैं तो सबको एक समान होता है।
1: आपने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार भी किया है, तो ये आपने कब कहाँ और कैसे सीखा?
0: जड़ी बूटी का क्या है, हमारे अकेले ने हमारे साथ में 7-8 बहने लोग हैं तो हमारे बहनों में भी बहुत कुछ इस बारे में ज्ञान है। जैसे जड़ी बूटी इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जंगल में जितना भी रहने वाला हमको बचपन से नॉलेज है और एकदम कमजोरी हो जाते हैं, 6 महीना तक साल भर तक लोग ऐसी कमजोरी में रहते हैं, हम उन ऐसी लोगों को अब यहाँ का ही जो वस्तु मिलता है तो उसको इकट्ठा करके हम लोग उसका पूरा बना के कभी सुरन के नाम से बनाते कभी लड्डू बना के देते हैं जड़ी बूटी का। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे गांव गांव में जा करके इसका भी करते हैं, कुपोषित है सभी है ये सभी दवा हम लोग उनको माने दवा माने यहाँ हमारे जो हमारे आत्म जो खेती करते हैं उसी में से हम लोग इसको बना के खा सकते हैं तो कितना हम लोगों का तंदुरुस्त होता है। हम लोग तो ये तो हमारा परंपरा है, आदिवासियों में तो जुड़ा हुआ रहता प्रकृति से जुड़े हैं, इसका सब मालूम रहता है, सूजन आने से कैसे उसको करते हैं उबाल के कैसे नहलाते हैं, सूजन कैसे उतरता है, गाँव होने से ये दवा लगाने से गाँव बढ़ता है, ये सारी जानकारी हम तो इंसान के गाय बैल से लेके सभी का सेवा करते हैं।
1: और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, तो आपका योगदान देश और दुनिया जाने और सरकार की ये जो पहल है ये आपको किस तरह से लगती है?
0: हम लोग तो अभी तक की 1984 से आज तक ने जो काम किए हैं, जो हम चाहते हैं कि इस काम को गुप्त रूप से रहे काम करते रहे, लेकिन ये ऐसा एक काम होता है कि इसको छुपा नहीं सकते है, जन जन में पहुंचने वाला काम है, हर व्यक्ति का पुकार है, इस गांव से लेकर नगर से लेकर बड़े बड़े शहर से लेकर केंद्र तक का ये अपने आप ही होने वाला चीज है। तो आगे फोकस हो गया आगे चला गया और आज हम जैसे कि धूल में मिले हुए कंकड़ को परसमणि बनाने की कोशिश करने वाली सरकार है उनके हाथ में और इसमें बड़ा समाज है, ये समाज का बल है, समाज का ऋणी है। तो आज तक हमने जो किए है कि हमने भी नहीं कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा अवार्ड जो है कभी होगा और सम्मानित करने का कभी मौका हमको भी मिले, ऐसा कभी हम लोग को पता भी नहीं था, लेकिन आज ही आप सभी का सहयोग है, हमारे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला और पूरे बस्तर संभाग हमेशा लोग सोचते थे कि लोग ये अबूझ है, आप जान रहे हैं, तो ऐसा क्षेत्र में भी आज ही उभर कर काम सामने आया, ये कार्य का प्रणाम है ये सब करने के लिए है। और ये सब आज जो पिछड़े समाज भी चाहता है कि हमारे बीच में कोई सम्मानित

0: है वो उनका सम्मानित है ये सब।
1: कार्यक्रम में शामिल होने, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold। 100.1 FM Gold। মন কারা কথা আর মন মাতানো গান শুনছেন মনের মেলোডি 100.1 FM Gold। মনের মেলোডি।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेते के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार अबेलार्डो डे ला एस्प्रियला की जीत। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर के गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीतने के साथ संपन्न। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से और ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेत्सेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉक्टर जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूसन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार अबेलार्डो डे ला एस्प्रियला ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की है। उन्होंने वामपंथी सीनेटर इवान सेपादा को मामूली अंतर से हरा दिया। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार डे ला एस्प्रियला को लगभग 49.7% वोट मिले जबकि सेपादा को करीब 48.7% मत प्राप्त हुए। वकील और व्यवसायी अबेलार्डो डे ला एस्प्रियला ने चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध पर सख्ती से कार्रवाई का वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के साथ घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने की भी बात कही थी। उनकी जीत को अर्जेंटीना और चिली के कई दक्षिणपंथी नेताओं ने स्वागत योग्य बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव परिणाम का स्वागत किया है। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में अपना भारी बहुमत बरकरार रखा है। चुनाव परिणाम कल घोषित किए गए। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। नई संसद के अक्टूबर में सत्र शुरू होने और अबी को अगले 5 साल के कार्य

0: साल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। असहमति पर दमनकारी कार्रवाई के कारण चुनावों में बाधा उत्पन्न हुई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज करते हुए विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट का अपना पहला गोल दागा और इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप जी में पहले स्थान पर आ गया। इससे पहले केप वर्दे ने फ्लोरिडा में ग्रुप एच के मैच में उरुग्वे को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। ईरान और बेल्जियम के बीच भी कल रात कैलिफोर्निया में ग्रुप जी का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। 66वें मिनट में नाथन नगोए को मेहदी तारेमी पर फाउल करने के लिए रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद बेल्जियम के 10 खिलाड़ी रह गए, लेकिन ईरान इसका फायदा नहीं उठा सका। इससे पहले स्पेन ने अटलांटा में ग्रुप एच के मैच में सऊदी अरब पर 4-0 की शानदार जीत के साथ अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। स्पेन के अब 2 मैचों में 4 अंक हैं, जबकि सऊदी अरब 1 अंक पर बना हुआ है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किया। भारतीय टीम के स्टैंड इन कप्तान हार्दिक सिंह को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की वापसी हुई है। दौरे पर शुभमन गिल कप्तान और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। बोर्ड ने रोहित शर्मा, KL राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्षदीप सिंह और गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया है। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर के गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीतने के साथ ही संपन्न हो गया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन,

0: रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
1: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुडू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते।
2: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
3: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, ये तो खूब ही आनंद का बात है। और बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज्यादा खुश है। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
2: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
3: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बाद भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का, वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए। हम बहुत खुश है।
2: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
3: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था 8वां सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए, इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके बाद में जब डिक्लेयर हुआ संताली भाषा अष्टम तपसील में इंक्लूड हुआ, ये जो सक्सेस है ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी, ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों मिलके बैठो सक्सेसफुल ये मिला है।
2: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
3: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो वो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा, लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करते हैं।
2: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
3: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा, लेकिन बांग्ला हम लोग का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संताली। तो हम लोग क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा

0: अंतली स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहां हम जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है, आंसर पेपर में हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो मास्टर लोग को है बहुत पसंद आता था, ये लड़का तो वो अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हम सिर्फ क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है किताब में, हम पढ़ा भी है। क्या करता था, जब लिखता था आंसर पेपर जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर के पास से, अब लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आगे हम लोग जाओ, पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था। हम तो रिएक्शन लेता था, कैसा लगा है, कैसा ही है, तो बोलता ना बहुत अच्छा लिखा है। तब तक इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया लिख के गया लिख के गया, ऐसा करते करते लेखक का दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एकटा इंस्पिरेशन मिल गया।
1: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
0: प्राइमरी गांव में है, नोहाड़ा गोड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहाँ से पास आउट होके अंकलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए हम प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ग्रेजुएशन किया है।
1: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
0: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में, अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लास शुरू किया हम। चार साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ तीन चार नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बंगाल का ऑडिटरशिप एक साथ मिल गया सब। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर, उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है ये के लिए, हायर पोस्ट के लिए हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर किया है, लास्ट में रिटायर किया है ओडिशा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
1: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है, दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना दूर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
1: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
0: अभी तो रिटायर कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा, फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक के साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी के साथ तालमेल के हम काम करके जाएगा, जितना दिन हम जियेंगे इतना दिन काम करेंगे। और अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपुल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा, कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से, इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है। इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं,

0: इतना संभव हो गया मालूम नहीं।
1: टुडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
0: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सा नेग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लेके के बहुत सा पीछे चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ना है।
1: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अगर हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसा भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटालिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। हर आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
1: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
0: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था वीर बिरसा, तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा सारजोंदा, वही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य एकेडमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
1: टुडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
0: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिल रहा है, ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है। अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलेगा, यही अच्छा वाला बात है। हम तो ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, ये अच्छा होता है।
1: टुडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टुडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुडू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर ठीक 11:26 पर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
0: जी हाँ, लो आगे उनकी याद है प्रोग्राम का नाम, और सुबह की सुहानी सी बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन में जैसे कोई पुराना रेडियो बज उठता हो, कोई धुन, कोई मुस्कान, कोई याद। फिर देखते ही देखते हम उन दिनों में पहुंच जाते हैं जहां जिंदगी थोड़ी धीमी थी, रिश्ते थोड़े गहरे थे और गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं दिल की जुबां हुआ करते थे। आज की महफिल एक ऐसा ही शख्स का नाम है, एक ऐसा इंसान जिसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसके लिखे कुछ हुए शब्द पीढ़ियों तक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। आज बात हो रही है आनंद बख्शी साहब की। लेकिन दोस्तों, आज हम तारीखों और उपलब्धियों की सूची में नहीं पढ़ेंगे, आज हम उस इंसान को महसूस करने की कोशिश करेंगे जिसकी कलम ने लाखों लोगों को अपने जज्बात व्यक्त करने का तरीका दिया। कभी अपने गौर किया कि हम जिंदगी के बहुत से महत्वपूर्ण पल गीतों के सहारे याद करते हैं। पहली मोहब्बत याद आती है तो कोई गीत याद आता है, कॉलेज के दिन याद आते हैं तो कोई गीत याद आता है, दोस्तों की महफिल याद आती है तो कोई गीत याद आता है, और कई बार हमें ये भी पता नहीं होता कि उन गीतों के पीछे किसकी कलम थी। लेकिन उन कलमकारों में एक नाम बार बार सामने आता है, आनंद बख्शी का। और मज़ेदार बात है कि आनंद बख्शी की सबसे बड़ी ताकत वही थी जिसे अक्सर लोग साधारण समझ लेते हैं, सादगी।

0: छोरू।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

0: आनंद बख्शी कभी कठिन शब्दों के पीछे नहीं भागते थे, वे दिल तक पहुंचने के पीछे भागते थे। उन्हें पता था कि अगर किसी माँ को गीत पसंद आना, किसी रिक्शे वाले को गुनगुनाना, किसी कॉलेज के छात्र को याद रखना और किसी बुजुर्ग के को बरसों बाद भी याद आना तो भाषा सरल होनी चाहिए। और यही वजह थी कि उनके गीत लोगों को अपने लगते थे। ऐसा नहीं लगता था कि कोई कवि मंच से भाषण दे रहा है, लगता था जैसे कोई दोस्त पास बैठकर बात कर रहा है। दोस्तों, आज हम गीतकारों की बात करते हैं तो अक्सर उन लोकप्रियता के बारे में बात करते हैं, लेकिन आनंद बख्शी के साथ एक अलग बात थी। वो लोकप्रिय होने के लिए नहीं लिखते थे, वे लोगों तक पहुंचने के लिए लिखते थे। और जब कलाकार लोगों तक पहुंच जाता है तब लोकप्रियता अपने आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। बढ़ते हैं उनके अगले गीत की ओर, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सोचिए, एक ऐसा इंसान जो गायक बनने का सपना लेकर निकला था, आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे चर्चित गीतकार बन गया। जिंदगी कभी कभी इतनी दिलचस्प कहानी लिखती है। कहा जाता है कि जब इंसान के लिए कोई रास्ता तय होता है तो वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है। आनंद बख्शी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी आवाज से ज्यादा लोगों को उनके शब्द पसंद आने लगे और फिर एक ऐसा समय आया जब संगीतकारों को, निर्माताओं को भरोसा होने लगा कि अगर गीत आनंद बख्शी लिख रहे हैं तो उसमें लोगों तक पहुंचने की ताकत जरूर होगी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, एक बात तो है कि आनंद बख्शी के गीतों को सुनते हुए अक्सर महसूस होता है कि उन्हें रिश्तों की गहरी समझ थी। उन्हें पता था कि मोहब्बत सिर्फ इजहार नहीं होती, उसमें इंतजार भी होता है। उन्हें पता था कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक नहीं होती, उसमें भरोसा भी होता है। उन्हें पता था कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, उसमें संघर्ष भी है, उम्मीद भी है और सपनों की चमक भी। शायद इसी वजह से उनके लिखे हुए गीत अलग अलग उम्र के लोगों को अपने लगते। एक युवा भी उनसे जुड़ जाता, एक बुजुर्ग भी, एक प्रेमी, एक दोस्त, और यही किसी लेखक की सबसे बड़ी जीत होती है।

अभी अभी हमने जिस गीत का आनंद लिया, उन शब्दों में जो सहजता थी, वो अपनापन था, वही आनंद बख्शी साहब की सबसे बड़ी पहचान थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर ऐसा क्या था उनकी कलम में कि गांव का आदमी भी उनके गीतों को अपना मानता और शहर का पढ़ा लिखा श्रोता भी। शायद जवाब उनकी जिंदगी में छिपा है, क्योंकि जिसने जिंदगी को करीब से देखा वही जिंदगी के बारे में सच्चाई देख सकता है। आनंद बख्शी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सपने थे, संघर्ष थे, सफलताएं थी, फिर एक दिन सफलता भी थी। लेकिन सफलता की कहानी तो सब जानते हैं। आज बात उन दिनों की चली थोड़ी सी छेड़ देते हैं, जब मंजिल बहुत दूर थी, जब मुंबई सिर्फ एक सपना था, जब जेब में उम्मीद ज्यादा थी और पैसे कम थे। कहा जाता है कि आनंद बख्शी साहब जब फिल्म दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब कई बार उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि शायद ये दुनिया उनके लिए है ही नहीं। लेकिन कुछ सपने होते हैं जो इंसान को चैन से बेचैन कर देते हैं। वो बार बार आवाज लगाते, बार बार बुलाते, और शायद यही वजह है कि हर निराशा के बाद भी वे सिर्फ फिर से लौट आते, फिर कोशिश करते, फिर उम्मीदें बांधते। आज के दौर में हम अक्सर सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे इंतजार को नहीं। हमें मंजिल दिखाई देती है, सफर नहीं। आनंद बख्शी का जीवन हमें यही सिखाता है कि कभी कभी सपनों को पूरा करने में समय लगता है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते भी बनते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो लोगों को बहुत ध्यान से देखा करते, किसी की बातचीत, किसी की आदत, किसी का अंदाज। उनके लिए हर इंसान एक कहानी थी। शायद यही वजह है कि उनके गीतों में आपको किताबों की दुनिया कम और असली जिंदगी ज्यादा सुनाई देगी।

पता है दोस्तों कि आनंद बख्शी इतने बड़े गीतकार होने के बावजूद उनमें कभी ये एहसास नहीं आया कि वे लोगों से अलग है। वे आम लोगों के बीच सहज महसूस करते थे, शायद इसलिए उनके गीतों में भी आम आदमी दिखाई देता। वहाँ कोई कृत्रिमता नहीं थी, वहाँ जीवन की सच्चाई होती, हंसी भी होती, आंसू भी होते, उम्मीद भी होती और सपने भी होते, यानी वही सब कुछ जिससे हमारे और आपकी जिंदगी बनी है। किसी कलाकार की महानता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि कितने पुरस्कार जीते हैं उन्होंने। असली महानता यह है कि लोग उसे कितने वर्षों तक याद रखते हैं, और आनंद बख्शी इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे। आज भी उनके लिखे गीत नई पीढ़ी सुनती है, आज भी उनके शब्दों में वही ताजगी महसूस होती है, आज भी उनकी पंक्तियां लोगों के दिलों तक पहुंचती है। यानी समय बीत गया लेकिन उनका जादू नहीं बीता करते, और शायद यही वजह है कि आज जब हम उनकी बात करते हैं तो केवल एक गीतकार की बात नहीं करते, हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने शब्दों को भावनाओं का घर बना दिया, जिसने लाखों लोगों की खुशी और यादों में अपनी जगह बना दी और आज भी अपने गीतों के जरिए हमारे बीच मौजूद है। तो यूं ही आनंद बख्शी को याद करते हुए कब समय बीत गया इसका पता ही नहीं चला। फिलहाल अब धीरे धीरे हमारे भी विदा लेने का वक्त हो चला है और मिलूंगी किसी और दिन किसी और समय कुछ और बातों और गीतों के साथ वापस। बहुत ही जल्द शाम के वक्त वापस से मुलाकात होगी इस महीने, तो मिलते हैं तब। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, 100.1 FM गोल है ये खरा सोना, और थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम इसी चैनल पे। और मिलती हूँ मैं संचयिता में, यानी कि कोलकाता भी संचयिता में आपसे वापस कार्यक्रम हिंदी कार्यक्रम सुरभि के साथ। तब तक के लिए किशोर कुमार एवं साथियों की आवाज़ में फिल्म कर्ज से ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार

0: नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्किक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar arrived in Mongolia today for an official 2-day visit. In a social media post, Dr. Jayashankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivapur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the 2-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
2: During the meeting, the national security advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, non-traditional security challenges confronting the world today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The national security advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi and a firing-cum-robbery case in Chandra Dholi district. In Jharkhand, at least 8 people were killed and several others injured in multiple lightning strikes reported from different parts of the state during the past 24 hours. The incidents were reported from Ramgarh, Giridih, Khunti, Deoghar, Dhanbad and Sahibganj districts. The injured have been admitted to hospitals for treatment. Officials said that some of them are in serious condition. Meanwhile, authorities have advised people to remain alert during thunderstorms and adverse weather conditions. The Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir and Ladakh today. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade. Today, the Sensex climbed 360 points to 77,163, while the Nifty rose 105 points to 24,118 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

মোটরের চাকায় সে দিল প্রাণ তাই কুচ কুচে।

পুষি বল এ শহরে ছিল একটাই, পুষি বল, পুষি বল।

0: 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: 21 जून तक समेते जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआ पार, बुधपांक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड, बलंगीर, नौपाड़ा, गुनपुर, लांजीगढ़ रोड, जूनागढ़ और बोबिली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह के टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाया गया है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का भी प्रस्ताव है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि तमिलनाडु के जल अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल और कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में हुए बदलावों से शासन और प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों नागरिकों का जीवन अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमामय बनाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के लेख को साझा करते हुए कहा कि जनता का विश्वास सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतसेग बटमुक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईए, डीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इजराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस

100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आरजे अंकित और अगले 7 बजे तक दोस्तों हम साथ बिताने वाले हैं एक ऐसी खूबसूरत संध्या जिसमें होगी चाय की गर्माहट, यादों की मिठास और हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों की अनमोल धरोहर। दिन भर की व्यस्तता के बाद जब शाम की ठंडी हवा दस्तक देती है और हाथों में चाय की प्याली होती है तब दिल भी कुछ सुकून चाहता है। ऐसे ही सुकून के पलों को और भी खास बनाने के लिए लेकर आए हैं चाय और क्लासिक्स। तो आइए अपनी पसंदीदा चाय की चुस्की के साथ शुरू करते हैं सुनहरे संगीत सफर की पहली कड़ी को।

0: वाह क्या बात है दोस्तों,
1: लग जा गले। ऐसा गीत जिसे सुनते ही लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। कहा जाता है कि अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर एक नया एहसास दे जाते हैं। यही तो पुरानी फिल्मी संगीत की सबसे बड़ी खूबी है, ये उम्र के साथ और भी खूबसूरत होते जाते हैं। चाहे की पहली चुस्की और ऐसा गीत, इससे बेहतर शाम की शुरुआत भला और क्या हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

फिल्म मेरे सनम से दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। ओपन एयर ने सजाया था, संगीत से मजरू ने सवारा था बोल से। दोस्तों भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक एहसास है। कहीं दोस्तों की महफिल चाय से शुरू होती है, कहीं परिवार की बातें चाय के साथ पूरी होती है, और कहीं किसी अनजान से मुलाकात भी चाय की प्याली पर दोस्ती में बदल जाती है। शायद इसलिए कहते हैं जिंदगी की सबसे अच्छी बातचीत अक्सर एक कप चाय के साथ होती है। अब सुनिए एक ऐसा गीत जो मोहब्बत की नज़ाकत और अपनापन दोनों समेटे हुए हैं।

हम दोनों से मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में बहुत ही प्यारा संगीत संगीत से सजाया था जयदेव ने, बोल से सवरा था शहीर ने। दोस्तों पुराने दौर में गीतों की रिकॉर्डिंग आज की तरह अलग अलग ट्रैक पर नहीं होती थी। पूरा ऑर्केस्ट्रा, गायक और संगीतकार एक साथ स्टूडियो में मौजूद रहते थे। एक छोटी सी गलती होने पर पूरा गीत फिर से रिकॉर्ड किया जाता था। शायद यही वजह है कि उन गीतों में एक अलग ही आत्मा महसूस होती है। अब सुनिए एक ऐसा गीत जो अपने बोल, धुन और गायकी तीनों के लिए अमर है।

चौदहवीं का चांद का टाइटल ट्रैक मोहम्मद रफी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में रवि का संगीत शकील बदायूनी के बोल। शाम धीरे धीरे अपने पूरे रंग में आ रही है, सूरज ढल रहा है, आसमान सुनहरे रंगों से भर रहा है, और अगर ऐसे मौसम में

गाने के साथ हो तो शाम अपने आप यादगार बन जाती है। अगर आप इस समय ऑफिस से घर लौट रहे हैं या फिर घर की बैल्कनी में बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं तो हमारा साथ बनाए रखिए। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसने प्रेम और जीवन दोनों को बेहद खूबसूरती से बयां किया।

दिल अपना और प्रीत पराई से दोस्तों लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत शंकर जयकिशन का संगीत शैलेंद्र के बोल। उम्मीद दोस्तों आपकी शाम चाय की खुशबू और सदाबहार गीतों के साथ और भी खूबसूरत बन रही होगी। संगीत की यही खासियत है कि हमें कुछ देर के लिए सारी भागदौड़ से दूर ले जाकर सुकून की दुनिया में पहुंचा देता है। इसलिए अब बढ़ते हैं अगले खूबसूरत नगमे की ओर।

कटी पतंग से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, आरडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। 5:44 PM हो चुका है दोस्तों, अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है चाय और क्लासिक्स आपके अपने चैनल पर यानी 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। रहने वाला हूँ इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ 7 बजे तक और लेकर आया हूँ ढेर सारे सुपर हिट ओल्ड बॉलीवुड ट्रैक्स। दोस्तों शाम का अपना एक अलग ही मिजाज होता है, सुबह उम्मीदों की होती है और दोपहर जिम्मेदारियों की, लेकिन शाम शाम अपने लिए होती है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब मन थोड़ा ठहरना चाहता है तब एक प्याली चाय और पुराने गीत किसी मरहम से कम नहीं लगते।

देव आनंद पर फिल्माए गए गीतों में एक अलग ही अंदाज दिखाई देता है। उनकी सहज मुस्कान, बेफिक्र चाल और कैमरे के सामने स्वाभाविक अभिनय ने उन्हें सदाबहार सितारा बना दिया। यही वजह है कि उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय है। अब पेश है एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की सादगी और मासूमियत दोनों झलकती है।

फिल्म आरजू से दोस्तों आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी के बोल। कहते हैं चाय अकेले पी जाए तो आदत बन जाती है और साथ में पी जाए तो याद बन जाती है। शायद इसलिए शाम की चाय के साथ परिवार की बातें, दोस्तों की हंसी और पुराने गीत हमेशा दिल के करीब रहते हैं। अगर आप इस समय सफर में हैं तो सुरक्षित रहिए और हमारे साथ इस संगीत यात्रा का आनंद लेते रहिए। अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

फिल्म मेरे जीवन साथी से दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत। पुराने दौर के गीत को सबसे बड़ी खूबी यही थी कि हर गीत अपनी एक पहचान होती थी। धुन सुनते ही श्रोता पहचान लेते थे कि संगीतकार कौन है और आवाज सुनते ही गायक का नाम जुबान पर आ जाता था। इसलिए आज भी इन गीतों का जादू बरकरार है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसने दोस्ती प्यार और जिंदगी तीनों की खूबसूरती से छुआ। और दोस्तों इसी गीत के साथ आपको मैं 6 बजे डायरेक्ट लिए चलूंगा दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे न्यूज़, और फिर मैं लौटूंगा 6:20 पर, जहां पर चाय और क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा आप लोगों के लिए। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर। मिलता हूं बहुत जल्द।

0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा और अब तक के अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। आप अपने जीवन और कार्यों की इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं?
2: मैं रेलवे नौकरी करता था। उस टाइम में गार्ड का नौकरी में दो स्टेज है। एक स्टेज में गुड्स ट्रेन वर्किंग करना पड़ता है, तो गुड्स ट्रेन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जिम्मेदारी ज्यादा है और एकाकी का काम है, अकेला ही रहता है। वो झार आदि तूफान जो भी है उसको सामना करने पड़ता है, और आधारी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी का तो भी देखभाल करने होता था।
1: अशोक जी, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपकी प्रमुख प्रेरणा क्या रही? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
2: प्रेरणा मिला काम करते प्रगति का साथ रहते हुए। अंधारी डिब्बा में जब अकेलापन था उस टाइम में चिंतन भावना और प्रगति में क्या देखा, बाहर जगत में क्या है क्या नहीं है वो हम अंदर में ले लेता, माने बाहर दर्शन अंतर दर्शन में आ जाता था। उसका बाद जब हमारा माने नौकरी खत्म हो जाता है, ड्यूटी शेष फेस टाइम में तो रेस्ट मिलता है, घर चला आता है, कभी रानी हूं में चला जाता है। उसका बाद जब भार फिकता वही जो भावना मेरा कल्पना जो देखा हम जो फेस किया वही चीज हम आके पेन पेपर में लिख के, जो मेरा चिंतन क्या है, क्या हम बाहर जगत में टोबिक में देखा और क्या होना चाहिए। मेरा भी वैसा ही है, एक संसार में फूल खिलती है वो फूल भी झड़ जाता है और उसको कोई कीमत नहीं रहता है। जब तक फूल बगीचा में रहता है तब तक उसको कीमत है। मेरा आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, जब तक आपको काम रहेगा तब तक कीमत रहेगा, और काम का अभाव में और कोई इसको कीमत नहीं है। तो एक तो जगह में कीमत है जहाँ आप ऐसा काम करना है जो काम समाज का हर आदमी को काम में आएगा। कुछ चेतना समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए आदमी के लिए हम सोचा, क्या हम देखा आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज एक अनुप्रेरणा हम प्रकृति से मिला। उसका बाद मालगाड़ी का बाद जब पैसेंजर में प्रमोशन हुआ तो आदमी का साथ मेरा काम हुआ। आदमी जब जाता है काहे के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाता है। दिन में रात में आदमी का साथ हम था और उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है वही ज्ञान का हम किताब में लिखा है, जो क्या आदमी परिश्रम करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अगेंस्ट द नेचर वी हैव टू परफॉर्म आवर जॉब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हम देखा और उसी चीज का हम किताब में लिखा है।
1: अशोक जी, आपको इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है बल्कि आपके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी है। तो इस सम्मान के लिए चुने जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, कोई अवार्ड मिलने से एक तो इंस्पिरेशन मिलता है और हम जो हमारा काम हमारा रास्ता सही था और मेरा काम भी सफल हुआ जिससे कारण से हमको मिला। 30 साल तक हम ये साधना किया, लेखा पढ़ा के साथ जुड़ा हुआ है और वो काम करते चले। हम कभी नहीं सोचा कर्मण्येवाधिक रास्ते में पुलिस पदा चलना, नहीं नहीं कभी नहीं सोचा जे हमारा एक पुरस्कार मिलेगा। हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया तो उसमें और चेतना हमारा इंस्पिरेशन वाला समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो हम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार को, उसके बाद मोदी जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो सही कर्मों का फल मिला है मेरा समाज

0: को मिला, हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक अनुप्रेरणाएं जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षा अनुरोगी मानुष, उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है उसको साथ मेरा विजय हम बांटना चाहता है।
1: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?
0: नेक्स्ट जेनरेशन, देखिए कोई काम दृष्टि ठीक रख के प्रोचेस्टा जारी रखना है अविराम, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हमारा काम में बाधा आ सकता है, रुकावट आ सकता है, लेकिन जब हमारा प्रोचेस्टा रहेगा उसका ऊपर, डिवोशन रहेगा काम का ऊपर, तब कामयाब हो जाएगा। यही मेरा सोच है और यही मैंने सोच हम संसार को, मानुष आदमी को, समाज को देने चाहता है। जे शिक्षा चेतना आदमी को होता है तब उसको सही दिशा सही काम में वो काम करेगा। देखिए मुंह का तो जैसा वर्षा का पानी नदी में बह जाता है तो बह ही जाता है, तो समाज में पैसा बहुत ही आदमी आता है, भीड़ करता है, अपना काम हो जाता है, चला जाता है, लेकिन वास्तविक में जो है सब अकेला है। सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से विलीन हो जाता है, यही मेरा सिद्धांत है। तो इसमें कोई आवेश नहीं है, यही हमारा दृढ़ सिद्धांत है।
1: अशोक जी, आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया, और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?
0: शिक्षा तो चेतना देता ही है। देखिए आज का जो समाज व्यवस्था है, आज का जो शिक्षा है, हमारा पीरियड में ऐसा नहीं था, इतना फैसिलिटी भी नहीं था, इतना मोबाइल फोन भी नहीं था और टेलीफोन भी बहुत आदमी को पास में नहीं था। बड़ा बड़ा आदमी जो था उसको पास टेलीफोन का बुनियादी व्यवस्था था, और जो सामान्य आदमी था उसके लिए एक ही काम था, जो हमको कुछ करना है तो क्या करेगा, हमको लेखा पढ़ा सीख के समाज को परिवार को बचाना है, रोजगार करना है, और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। तो पहले अपना विकास करो, उसके बाद दूसरा विकास करने जाओ, चिंता करो, तब विकास होगा। तो वो सोच हम लोग, मेरा को मिला इनिशियल स्टेज पे, इस चीज हम अपना से सोचा। उस टाइम में कोई विनोदन का व्यवस्था नहीं था और शिक्षा चेतना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पोस्ट कार्ड का व्यवहार था, एक तो जोगाजोग व्यवस्था भी अच्छा नहीं था, पोस्ट कार्ड में सब कुछ वो तो टाइमिंग फैक्टर था, जिससे कारण से एक ही चीज आनंद मिलता था, किताब मिला, किताब पढ़ने से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है, शिक्षा भी उसमें ही रहता है, यही मेरा विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको संजोड़ रहेगा।
1: अशोक जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आरजे अंकित और आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर चाय और क्लासिक्स। उम्मीद है आपकी शाम हमारे साथ यादगार बन रही होगी। चाय की मिठास, शाम की नजाकत और सदाबहार गीतों का साथ, इससे बेहतर संगत भला क्या हो सकता है। चलिए अब इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: फिल्म आनंद से दोस्तों मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, सलील चौधरी का संगीत और योगेश के थे बोल।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री के रोजगार एवं कौशल विकास पैकेज के अंतर्गत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। योजना के दो भाग है, ये कर्मचारियों को सहायता प्रदान करती है और प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग देती है, साथ ही अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा योजना नए उद्योगों के प्रवेश को बढ़ावा देने और मौजूदा उद्योगों विशेष रूप से श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों के विस्तार में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के पूरक होगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से किया जाएगा और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: दोस्तों शाम हमें एक खूबसूरत संदेश देती है। दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हर शाम हमें कुछ पल अपने लिए निकालने चाहिए। एक अच्छी किताब, एक प्याली चाय या फिर अपने पसंदीदा गीत, ये छोटी छोटी बातें जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की गहराई और इंतजार का मिठास दोनों है।

फिल्म जंगली से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। गीत संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने और बोल से सवारा था हसरत जयपुरी ने। पुराने दौर में गीतों की रिकॉर्डिंग कई कई दिनों तक चलती थी। संगीतकार, गीतकार, गायक और पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम हर छोटे से छोटे सुर पर मेहनत करती थी। इसी लगन का नतीजा है कि आज दशकों बाद भी ये गीत उतने ही ताजा और दिल के करीब लगते हैं। अब पेश है एक ऐसा गीत जिसने प्रेम को बेहद सादगी से बयां किया।

फिल्म गाइड से दोस्तों आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। ये ट्रैक एसजी बर्मन का कंपोजिशन, लिरिसिस्ट शैलेंद्र। कहते हैं चाय का स्वाद सिर्फ उसमें नहीं होता बल्कि उन लोगों में होता है जिनके साथ वह पी जाती है। अगर इस वक्त आप अपने परिवार के साथ हैं तो ये शाम और भी खास है, और अगर सफर में हैं तो उम्मीद है हमारी आवाज आपका अच्छा साथी बन रही होगी। अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसने लाखों दिलों को छुआ।

अभिमान से मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में ट्रैक एस डी बर्मन का कंपोजिशन मजरूह के बोल। दोस्तों पुराने गीतों में सिर्फ धुन नहीं पुरानी कहानी होती थी, हर अंतरा हर मुखड़ा हर शब्द दिल को छू जाता था। यही वजह है कि आज की नई पीढ़ी भी इन गीतों को उतना ही पसंद करती है जितना पहले की पीढ़ियां करती थी। अब सुनिए एक और सदाबहार गीत।

फिल्म अंदाज से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत शंकर जयकिशन का संगीत हसरत जयपुरी के बोल। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। उनके बोल, उनकी धुन और उनकी गायकी सीधे दिल तक पहुंचाती है। अमर प्रेम का ये अगला गीत भी उन्हीं अनमोल नगमों में शामिल है।

फिल्म अमर प्रेम से किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने, बोल से सवरा था अनंत बख्शी ने। जिंदगी कभी सीधी राह नहीं चलती, इसमें खुशियां भी हैं, यादें भी हैं और कुछ अनकहे एहसास भी। शायद इसलिए पुराने गीत हर दौर में अपने लगते हैं। अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसकी हर पंक्ति आज भी दिल को छू जाती है।

फिल्म मौसम से दोस्तों आप सुन रहे थे गीत भूपिंदर सिंह की आवाज में, संगीत से सजाया था मदन मोहन ने और बोल से सवारा था गुलजार ने। दोस्तों बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आप लोगों के लिए, और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत FM गोल्ड से। मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर कुछ दिनों बाद, फिर से बेहतरीन गाने लेकर, और मैं मिलने वाला हूँ अब ठीक आपको 7:02 पर FM रेनबो पर। तो कहीं मजे बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खारा सोना पर, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम में आने वाला है इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए।

शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव

0: में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Uttar Pradesh, 14 students lost their lives after a massive fire broke out at a coaching center located inside a commercial complex in Lucknow's Aliganj area this afternoon. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. The blaze reportedly started inside the institute building and spread rapidly through the complex, which houses coaching centers, showrooms and a gaming zone, triggering panic among students. Fire brigade teams, police personnel and district administration officials are conducting rescue and evacuation efforts. Talking to media, Deputy Chief Minister Brajesh Pathak said that 14 students aged between 16 to 18 years who were present

0: पल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है देश के।

0: हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं और उसको संज्ञान में लेकर के और जब ये घोषणा हुई तब बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन भी मैं, माँ नर्मदा जयंती थी, माँ नर्मदा जी की सेवा में, स्वच्छता में हम सब हमारी टीम के साथ लगे हुए थे और इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर के।
1: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
0: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए।
1: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। सर, जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
0: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजाति आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, डैम बनाने का, बड़े तालाब बनाने का, तो ग्राम स्तर पर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां बहुत बड़ी संरचना बनाना ये संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे काम हमने प्रारंभ किए। वहाँ के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहाँ पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15-20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांवों में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला, गाँव में जलस्तर भी बड़ा। जिन गांवों में फरवरी में, मार्च में ही पानी समाप्त हो जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, वो फिर मई जून तक भी और उस गांव में पानी ठहरने लगा और इसलिए रोग भी रुकने लगे।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एजुकेट किया है? जो वहां के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की ट्रेनिंग में, उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। हमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं, हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उससे भी बच्चे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं और कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग

0: कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
1: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रहकर के तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिए, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए। जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए, जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहाँ होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गाँव में, और जो पलायन था। फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क, सब गाँव गाँव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिले की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
0: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
1: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवर टैंक है, पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इसमें वर्षा का जल भर जाता है, बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको, और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
0: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें जिससे वो भी, इस बार बारिश आने वाली है, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी, तो वो भी जल का संचयन कर सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए, फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा, ये 3 बातें। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है, हमारे घर का पानी घर में रुके, सके, उसके लिए हमारी घर पे की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें कि पानी पर्याप्त मात्रा में

0: उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं। अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए और छोटे छोटे काम अपने गाँव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गाँव का पानी गाँव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव-गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोना घाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल,
1: वो उसी
0: पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों को आह्वान किया कि ये सोना घाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। 2-4 साल में फिर से कह सकते हैं सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल। तो ये काम हम छोटे छोटे समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक प्रकार का एक काव्य संग्रह है जो प्रकृति को समर्पित है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल सर, आपके लिए परिवार और गांव आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं?
0: परिवार तो हमारा मूल आधार है हमारे समाज का। जब तक कुटुंब व्यवस्था हमारे समाज में है तब तक ही हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का है, हिंदू संस्कृति का है, वो अक्षुण है। क्योंकि हमको जितने संस्कार मिलते हैं सब प्रकार के, वो हमारे परिवार में मिलते हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का, जल का जो मुझे संस्कार मिला वो अपने परिवार के माध्यम से मिला कि घर में शाम के समय, आज भी आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े जो है वो बच्चा कोई अगर पेड़ को हाथ लगाता है तो पेड़ को हाथ नहीं लगाना, इस प्रकार का वो करते हैं रात को। तो ये परिवार से ही सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है, ये कुटुंब व्यवस्था। और ये ग्राम में आधारित जो भारत की व्यवस्था थी कि कैसे एक परिवार की तरह पूरे गाँव रहता है, आप देखेंगे प्रत्येक गाँव स्वावलंबी था। किसी गाँव को केवल नमक खरीदने के लिए गांव के लोग जाते थे, बाकी सारी चीजें गांव में पैदा होती थी, सारे कारीगर गांव में थे, चार महीने भी अगर गांव के बाहर नहीं जाता तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था। गांव गांव में किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई उद्योग होता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, कहीं पर कोई सामान बनता था और उसका विदेशों में जाकर के व्यापार होता था। और इसलिए अंग्रेजों के आने के पहले हमारी जो परिवार व्यवस्था और ग्राम्य व्यवस्था ये बहुत सुदृढ़ थी सारी दुनिया में। आज फिर से हमको उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और

0: के लिए जो एक अभियान चला कि कुटुंब कैसे फिर से सुदृढ़ बने, कैसे संयुक्त परिवार हमारे हो, ताकि ये सारी बातें जो सहज हमको सीखने को मिल जाती थी परिवार में, वो आज उसके लिए हमको अलग से प्रशिक्षण देना पड़ रहा है हमारे बच्चों को। पहले सारी चीजें परिवार में सीखने को मिल जाती थी, इसलिए उन गांवों को फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बैतूल जिले का एक बाचा गाँव को हमने उस रूप में लिया है, वो जनजाति गाँव है। तो एक अच्छा गाँव कैसे बन सकता है अपने गाँव के लोगों के माध्यम से, तो बाचा गाँव को सोलर ग्राम, जल ग्राम, आज पर्यटन गाँव के रूप में गाँव के लोगों के सहयोग से एक आदर्श के रूप में उसकी ख्याति हुई है। तो ऐसे गांव हम फिर से बनाए ताकि देश दुनिया हमारे गांव को देखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है परिवार को, तो वाकई घर परिवार से ही सीखे तो बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही सर, जो युवा वर्ग है वो कैसे इस जल संरक्षण पर्यावरण की दिशा में, काफी युवा कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो और जुड़ना चाहते हैं छोटे छोटे प्रयास क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, युवा इस दिशा में अभी पिछले एक दशक से जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, एक तो केस दरेन को लेकर के फिर एक पेड़ माँ के नाम को लेकर, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का और महिलाओं का, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने नवांकुर सखी जो अभियान चलाया था उसमें हजारों महिलाओं ने उसमें योगदान किया था, और अभी हमने युवा जन अभियान परिषद के माध्यम से जब काम प्रारंभ किया तो उसमें हजारों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। मैं देखता हूं कि पहले युवा जो है वो अपना जन्मदिन मनाते थे तो कहीं केक काटते थे, कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में देखता हूं कि अधिकांश युवा अपने जन्मदिन पर कोई पौधा लगाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं, या कोई गौशाला में जाकर के गोग्रास देते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति हमारे युवा आगे आ रहे हैं, और युवा जो है वो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, मोदी जी बार बार कहते हैं, और इसलिए युवा जिस दिशा में जाएंगे उधर पूरा समाज जाएगा। और आज हमारा युवा अपनी प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, अपने समाज को लेकर के जागरूक हुआ है निश्चित रूप से, और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। हमारे हर अभियान में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का रहता था तो वो युवाओं का और महिलाओं का ही बड़ी मात्रा में रहा है, और आगे भी युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि हम अपने स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़े, उद्यमी को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन साथ में प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण, इसको लेकर के भी अपने जीवन का एक भाग इसमें रखें, और जीवन व्यवहार में हमारे प्रकृति और जल संरक्षण ये रहे। छोटे छोटे काम करके हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर में हम पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जितना भी बजट हम अपने घर का बनाते हैं तो पानी का भी बजट बनाए कि भी हमारे एक व्यक्ति को 60 लीटर पानी लग रहा चाहिए, 60 से 100 लीटर, उससे ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज समाज को, प्रशासन को, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने भूगर्भ जल को बचा सकते हैं और वर्षा जल को बचा सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे उपाय हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि पानी का बजट बनाना पड़ेगा, पानी का सदुपयोग बहुत जरूरी है। मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए जरूर कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
1: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
0: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान

0: करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काशफिन नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री

0: और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति

0: होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhausaheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency.

0: রবীন্দ্রনাথ ঝড়ের অস্থিরতাকে অবলম্বন করে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে রবি কাপুর। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों

এসে হীরক দেশে, দেখে হীরের চমক এত খাতির পেয়ে, দেখে রাজার

রাজা এতই রসিক, রাজা এতই দরাজ, রাজা এতই মিশুক।

মাগারে। কিরে খামলি কেন, বাজা গামাপা মাগারে।